एल जी ले आयो नया एल जी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता पाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एल जी लाइफ्स गुड।

0: हो अब विदेश पठाएको पैसा सीधे खल्ती वालेट में
1: नेपाल को कुनै पनि बैंक खाता में वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफन्तको हात हात में पुर्याउन आईएमई गरौं
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास आईएमई गरौं।

0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सीता ए सीता
2: हजुर
1: रेडियो खोल त खबर चौतारी आउने बेला भयो।
2: ल ल खोलिहाले।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।